0: पड़ी संधी दीवार, जहाँ हाथी मुंडे चढ़ गया, सचित्र सिंह सरदार, अगवा खूनी हाथी पै गया।
1: ना शेर की हुए

जुल्फों के घूंघट में मुकड़त पसीना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का राग पुराना पुराना पुराना, मैं कैसे यमला पगला दीवाना।

सो दोस्तो, मैं गलबात कर रहा सी कि उस वक्त जेड़े लोका ने दावा किया सी कि धरती चपटी नहीं गोल है, उस वक्त दे जमाने ने उन्हां नूं सजाए मौत दित्ती। ते भारत दे विज्ञानियां दी गल सुन लो, असी टेकनीक ते पश्चिम दी है ना नकल मार के जे कुछ बना भी लईए, धार्मिकता दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं गल कर रहा, जदों मंगल यान जदों भारतीय विज्ञानियां ने बनाया ते आपे बना के बना लिया, फिर नारियल भन के धूफा जगा के उदी पूजा करन लै पे, हद हो गई। इहदे च की तुसीं जिहड़ी मशीनरी बनाई है कोई देवता बनाता है, तुहानूं कोई रब बनाता जिहदी पूजा करन रहे हो, हाथीं तां तुसीं इह सारा कुछ बनाया है। भावें टेकनीक किसी होर कंट्री की सी कोई गल नहीं, पर तुसीं चलो बनाया तो इहदे च पूजण वाली इहदे नक्क घसाउण वाली किहड़ी गल है। रफेल जहाज जदों लै गए, राजनाथ सिंह हुणां ने उहदे टायरां थले नींबू रखे, नारियल तोड़े, हांजी उहदी आरती उतारी, उह जहाजां दी पूजा कीती। जेड़े इंजीनियरां ने इह जहाज बनाए होणगे उह तुहाडे बारे की सोच रहे होणगे कि तुहानूं कुछ होर भी याद है, चेते आउंदा कोई कोई पूजण तों सवा, चूहियां तक पूजण तों सवा, हर उह चीज जिहदी समझ ना आए उहदे अगे मत्था ही टेकी चले जाणा, नदी अगे मत्था टेक देना, दरख्त अगले अगे मत्था टेक देना, फलानी चीज नूं इट्टां दा ढेर जिथे लगा होएगा उथे जा मत्था टेक देना, ए अंधविश्वास है, धार्मिकता नहीं। वो जहाजां दी पूजा कीती गई जी, नींबू धर के ए जहाज की

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसी साथी की सरगर्मी का कोई किसी किस्म का भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वह बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तो बिल्कुल ना छिड़के। वह अपनी सब तो प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना की, ना ही मौत तो डरते सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तो ना मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया। उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा, उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने। संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसानां किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओह उच्च कोटि दा कवि, लोक युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओह वधिया पुत, भरा, पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जा युक्त ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 उन्हां नूं हजूर साहिब तो एक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दिता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी। इह तिन्ने एक दूजे दे आपस विच वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां ने कोई तसली वक्त जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि आहे अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है, ते एक टैलीग्राम तुसी उन्हां दे घर किद्दां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओ कौन है कौन नहीं। जदों तुसी टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा, ते हैगा ते फिर ओ लावारस किद्दां होया। ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके, हां जी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हू लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ? ਤੇ ਮੋਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

Hello. दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक। तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम लेके तुहाडे नाल हाजिर हो गए जी। न्यूयॉर्क स्टूडियो तो, न्यूजर्सी तो, मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक। प्रोग्राम अज दी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नू जी। अज आपां कुछ गीत सुरिंदर शिंदा भाजी होना दे सुनांगे ते पुत जट्टां दे पहला गाना तुहाडी सेवा विच। उस तो बाद आपां फिर अगला प्रोग्राम जिहड़ा हैगा ओह खबरां दा कुछ करांगे, फिर डाक्टर साहब दा प्रोग्राम होएगा। दो घंटे दा प्रोग्राम तुहाडी सेवा च लैके हाजिर हो गए जी। लो जी पेश है पहला गीत।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 8 356-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक के नाल

दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते हो, ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा।

0: खेत खिलवाड़ पे होली की मनाइए, साडे रंग लुक गए ने।
1: वाह वाह वाह,
0: अग है चुपेरे बड़े दुख जो गुलाब है, वो डाडियां मुसीबतां च रंगला पंजाब है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: सत्थां विचों हासे सत्थां विचों

से छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तक।

0: आजा पिया तोहे प्यार दू, ओ गोरी भैया तोहे प्यार दू।
1: वाह वाह वाह राधा जी, आज मदर डेरी है तुहानू पता होना
2: जी।
1: हां जी,
2: तुसी
1: दुनिया दी सोहणियां मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे?
2: जी बिल्कुल, एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
2: हां जी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा,
2: यूपी च मंजली या मंजला भरा विचकारले नूं कहंदे।
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफ्ज आए, थैंक यू।
2: मंजली दीदी।
1: अच्छा, मंजली दीदी, ठीक है जी।
2: हां जी, उच्च सचिन छोटा जिहा सीगा ते उदे उत्ते गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उत्ते।
1: अच्छा, सुणाओ जी।
2: ते ए गीत वैसे तो सारे मावां लई इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी। ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा।
2: ते जेड़ा मैं आप जी ने सुनान लगी हूं, किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा।
2: और चूंकि मेरा शौक रहा ते मैनू तो फिर बचपन के सारे गीत
1: याद ने जी। मैं बिल्कुल
2: जी, ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्ने गीत याद रखने। मेरे ख्याल फिर 200-250 गीत मेनू मुंह जवानी बचपन की याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है जी।
2: हां जी बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देना है। ते मेरी मां ने कहा गुड्डी तेनू ए गीत याद है, तू ए गीत
1: सुना। गुड्डी हुंदा सी?
2: हां जी, हुंदा नहीं सी, हुण भी आ।
1: अच्छा, हुण भी तुहानू गुड्डी
2: मिलदी? तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे हो? आ जा हुण।
1: चलो जी, मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नाम नाल मुखातिब करांगा। बहुत सोहना नाम है गुड्डी। आम पिंडां विच हुंदा है कुड़ियां दे नाम
2: जी। ते मेरे नानी जी ते मेरे फादर मैनू गुड्डो कहंदे सी, प्यार नाल गुड्डो।
1: गुड्डी, हां जी हां जी। नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहिंदे सी।
2: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहिंदे हुंदे सी?
2: उदों कहिंदे सी नी गुड्डो सुनन दई आ उरे। तैनू सुनंदा नी? एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा।
2: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
2: ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ।
2: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਰੁਹਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ
2: ਜੀ
1: ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
2: ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁੱਡੋ, ਅੱਗੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ।
2: ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਿਆ ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਚਕ ਦਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਰੇਬਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
1: ਹਾਂ।
2: ਮੈਂ ਚੁੱਪ।
1: ਹਾਂ।
2: ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੀ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
0: ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही हो रहा कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पगलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा आप
2: सोच
0: तो मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

मुलार में मेले में अकेले तेरी बाजार सारे में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना।

छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना मैं कट यमला अगला दीवाना।

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हास्से खिलारदा।

0: वारिवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दिया सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी आ ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, ओदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ, ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारियां वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नू क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नू क्यों गुरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नू ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, और क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बन के, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होने वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा, ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾ ਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
1: ਹਿਰਦਾ ਹਟਾ ਦੋ ਜਰ ਮੁਖੜਾ।

0: जद अकबर वाले तारीख जाना क्या उठाई
1: वाह जी वाह वंडरफुल सॉन्ग बहुत खूबसूरत गाना दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा ते मैं अपनी एक रचना तुहाडे नाल पेश करदा ओदे बाद आप जी वाल लावांगा आप जीआं दीआं कालां लावांगा मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां

सो दोस्तो गल इदा भाई सोचने वाली गल ए है कि हजारां साल बीत गए ने ते 80 साल सानू आजाद होया नू भी हो गए ने। ठीक है जी, साडे च कोई बदलाव या क्रांति क्यों नहीं आई, चक्कर की है? साडे तो पिछले अगे निकल गए, रौला रप्पा बहुत सुनिया पर अंत विच ओही बाबा रामदयाल ते ओही भूरी खोती, सारे खोते पार्लीमेंट च बह गए ते साडी खोती बोर्ड थले खलोती। हां जी, बदलाव नहीं आया कोई। हुण तुसी सोचते होगे कि क्यों बदलाव नहीं आया। हां जी, साडा रहण सहण बदल गया, लफजां दे मायने बदल गए ने, साडियां चलाकियां बदल गईयां ने, असीं झुग्गियां तो कोठियां ते आ गए हां, और सैकलां तो कारां ते हवाई जहाजां तक पहुंच गए हां। हुण असीं चाची नूं आंटी कहिंदे हां। हां जी, ते चाची नूं आंटी कहिंदे हां ते पानी नूं वाटर कहिंदे हां असीं, फुफड़ नूं अंकल कहना शुरू करता असीं। तब्दीली नहीं आई है, साडी भाषा बदल गई, लकोकतियां बदल गईयां। जदों खोतियां तो मोटरसाइकलां ते ही आ गए, साडियां नजरां ते अदावां भी बदल गईयां। हर तरह की मशीनरी आ गई, और कंप्यूटर युग आ गया, चारे पासे बदलाव ही बदलाव है। ठीक है प्यारे भारतीयो, ये सारे अविष्कार जेड़े तुसी गिन रहे हो, बदलाव दे जेड़े ने, ये विज्ञान ते पछम दा दिता है। भारतीयो, तुहाडा तां लगभग इहदे विच जीरो योगदान है, ते जीरो कार्ड भी भारत दी है, ते जां फिर भारत दे झंडे च डंडा तुहाडा। कोई अंग्रेज सी ना, उन्हें वो पुछया बाजार विच भी आ फलाना चिट्टा रंग दे, ओ जापान आलियां दा हरा रंग उन्हां दा, बसंती रंग उन्हां दा, ते झंडे च तुहाडा किहड़ा रंग है भारतीयो? ते भारतीय जिहड़ा जवाब देण लगा कहिंदा झंडे च डंडा किहदा है? साडा। हां, ए झंडे च डंडा तुहाडा। पहला तां तुसीं गुलाम सी, ठीक है जी, पिछले 80 सालां तों तुसां कोई अंतरराष्ट्री खोज कीती है? सिफारशी टट्टू, नकलां मारन वाले, डिग्रियां मुल लैण वाले अविष्कार की करनगे यार? एक बारी ना एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे स्टूडेंटां ने जहाज बना लिया इंडिया च, बड़ी वड्डी गल है, जहाज बना लिया, ते उहदे ते लगे ना जदों उहदी पहली फ्लाइट लैण, ते उहदे च सारे प्रोफेसर बह गए, ते प्रोफेसरां ने कहा कि अहीं पैराशूट तों बिना नहीं बहना, की पता है स्टूडेंटां ने किदां दा जहाज बनाया ने, सारिआं ने पैराशूट पा ले, ते प्रिंसीपल अगली सीट पायलट दे नाल दी सीट ते बह गया, ते कोई पैराशूट नहीं लिया, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। प्रैस रिपोर्टर भी आए सन इधरों उधरों, ते प्रैस रिपोर्टर ने प्रिंसीपल नूं पुछया, सर पहली बारी जहाज उड़ाउण लगे ने मुंडे, ते पहली बारी मतलब कि तुहानू कोई खौफ नहीं, तुसीं पैराशूट भी नहीं लिया हैगा? हालांकि सारे प्रोफेसरां कोल पैराशूट ने, पायलटां कोल भी पैराशूट ने, तुसीं क्यों नहीं पैराशूट लिया? तुसीं

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जैसे यमला पगला दीवाना।